0: पर तन रूप कन्नी सुत कन फैलाए तबारी खाए नानक हंसा आदमी जामपुर जाए महला पहला
1: सबो सुतक परम है दूजे लगे जाए जमण मरना हुक्म है पाने आवे जाए खाना पीना पवित्र है दितों रिजक संभाहे नानक जिनी गुरमुख बुझया तिना सूतक नाहे पौड़ी सतगुरु वड्डा।

अन्न देवता पानी देवता वैसंतर देवता लोण पंजवा पाया किरत आहो वा पवित्र।

आप कराए साक्ति फिर आप कराए मार, इतना गली जंजीरिया एक तुरी चले बिसार, आप कराए करे आप कैसे करी पुकार, नान करना जिन किया फिर तिसनी।

आपे पांडे साजिया आपे पूर्ण दे एक नी दुध समाई है एक चले रहन चढ़े एक ने हाली पैसा।

सत नाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहन जिहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केहे अचल मूरत अनभउ प्रकाश अमित ओज कहिजै कोट इंद्र इंद्राण साहे साहान गणिजै तिर भवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बण त्रिण कहत तो सर्ब नाम कथय कवन कर्म नाम बरनत सुमत ज्योत रूप हर आप गुरु नानक कहायो ताते अंगद भयो तत स्यों तत मिलायो अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो अमर दास अमृत शतर गुर राम दियो गुर राम दास दर्शन परस कह मथुरा अमृत बैण मूरत पंच परमाण पुरख गुर अर्जन पिखोह नैण ज्यों जानहु त्यों राख हर प्रभ तेरिया केते गनो असंख अवगण मेरिया असंख अवगण खते फेरे नित प्रत सद भूलिया मोह मगन बिकराल माया तो प्रसादी भूलिया लोक करत विकार बिखड़े प्रभ नेर हूँ ते नेरिया बिनवंत नानक दया तारुहु

गए मशक्कत का नानक ते मुख इजले केती छुट्टी नाल। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

0: जर सर्व कला भरपूर दिसे जत कता नानक दासन दास तुदिया गए बिनवता।
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दुहिदा दाया खेले सगल जगत चंगियां आईया बुरियां आईया वाचे धर्म हदू करमी अपो अपनी के नेड़े

गए मसकत कह नानक ते मुख उजले इति जिनी नाम ते आया गए मसकत कह नानक ते मुख उजले किति छुटी ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

जस गोविंद दास तुहार राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां शब्दो तां गावहो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार यहो करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गलन समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रह हर नाले सचे साहेबा क्या नाही घर तेरा घर ता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिवत सला तेरी नाम मन वसावे नाम जिनका मन वस्या वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वस्या जिनिशां सब पुजाइयां सदा कुर्बान कीता गुरु विटहां जिस्तियां हे वड्याइयां कह नानक सुनहो संतह शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वज पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुदवस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख होआ तित घर अनहद वाजे आनंद सुनहो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे

बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहे गुरु जी की फातह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती समर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास। रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे है घर नौ निधि आवै ताए। सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री

प्रभदत्तदातार पर्याजाचकी शरणा मिलाय दान संतरेन जेह लग पवजल तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावै देहो दर्श मन चाओ भगति हे मन ठहरावै बलियो चिराग अंधियार में सब कल उदरीक नाम धर्म प्रगट सगल हर भवन मह जन नानक गुर पार ब्रह्म जीता समुंद सागर नीर भरिया तीते अवगुण हमारे दया करहो किश मेहर उपावहो डुबदे पत्थर तारे जीड़ा अगन बराबर तपै पीतर वगै काती प्रणवत नानक हुकम पिशाने सुख होवै दिन राती मैं मूर्ख की केतक बात है कोट पराधी तरियारे गुरु नानक जिन सुनिया पीखिया से फिर गर्भास ना परियारे गुरु नानक जिन सुनिया पीखिया ते फिर गर्भास न परियारे सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज सुपाय दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसमदी नूर अरसों कुरसों चटी तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिर शांद शाह जिस पास बैठिया सोही है सबना दावी साहो सज्जन सच्चा पातशाह सिर शांद शाह जिस पास

दीन का दयाल मादा गर्भ पर हारी चरण शरण नामा बल तिहारी दीन का दयाल मादा गर्भ पर हारी चरण शरण

हम अवगुण परे एक गुण नाही। अमृत शाड बिखै बिख खाई, माया मोह भरम पै भूले। सुत धारा स्यों प्रीत लगाई, इकोत्तम पंथ सुनियो गुर संगत। तेह मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की। गुर राम दास राखो सरनाई, एक अरदास पाठ कीरत की। गुर राम दास राखो सरनाई, सो कहो टल गुर सेविया, अहनस सहज दर्शन परसे गुरु कै। जन्म मरण दुख होवै सिफत खसामी, नूर अरसह कुरसह। तुद डिठे सच्चे पात सहा, मल जन्म जन्म दी। सजन सचा पात साहो सिर साहांद, जिस पास बैठिया सोही सबनांदा। सजन सचा पात साहो सिर साहांद, जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसाहो। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। तनासरी भगत रविदास जी की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हम सर दीन दयाल ना तुम सर। आप पति यार क्या कीजे, बचनी तोर मोर मन माने। जन का पूरन दीजे, हम सर दीन दयाल ना तुम सर। अब पति यार क्या कीजे, बचनी तोर मोर मन माने। जन का पूरन दीजे,

रहा बहुत जन्म बिछड़े थे माधव यहो जन्म तुम्हारे लेखे कहरब दास आस लग जीवा चिर भयो दर्शन देखे बहुत जन्म बिछड़े थे माधव यहो

0: चिर पयो दर्शन देखे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सिर मस्तक रखिया पार बंग हस्त काया रखिया परमेश्वर है आत्म रखिया गोपाल स्वामी धन चरण रखिया जुगदीश्वर सर्व रखिया गुरदयाल है पै दुख विनाशन है भगत वशल अनाथ नाथे सर नानक पुरख अचुत है। बिलावल महला पंजवा। ताती वो न लगई पार बहम सरनाई चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे न पाई सतगुर पूरा पेटिया जिन बणत बनाई राम नाम औख दिया इका लिवलाई रहाओ राख लिए तन रखनहार सा ब्याद मिटाई कहो नान कृपा भई तब भय सहाय सोहला रा गोड़ी दीप की महला पहला ओंकार सतगुरु प्रसाद जयकर कीर्ता किया करते का होए विचारो तत कर गावो सोहला सिवर हो सृजनहारो तुम गावो मेरे निर्भाव का सोहला हो बारी जित सोहला सदा सुख होए रहाओ नित नित जीड़े संभालिन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवै सदा ते कवन सुमार संभ तो सह लिखिया मिलकर पावो तेल देहो सजना सीसड़िया जो होवै साहब स्यों मेल कर करे हो पहुचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिया नानक से दे अवन रागासा महला पहला छे घर छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको बेस अनेक बाबा जयकर करते कीर्त होए सो कर राख बढ़ाई तोए रहाओ विश्वे चसिया घड़िया पहरा तिती वारी माहो होवा सूरज कुरत अनेक नानक करते के वेस राग तनासरी महला पहला गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मल आन लो पवन चवरो करे सगल बनराए फूलंत ज्योति कैसी आरती होए भव खंडा तेरी आरती अनहता शब्द बाजंत तेरी रहाओ सहस तब नैन नर नैन है तोहे को सहस मूर्त ननायक तोही सहस पाद विमल नन एक पाद गंध विन सहस तब गंध विचलत मोही समय जोत जोत है सोए तिसदा चानन समय चानन होए गुरसाखी जोत प्रगट होए जोत सुभावै सो आरती होए हर चरण काबल मकरंद लोभत मनोअंजन मोहे आही प्यासा कृपा जल दे नानक सारंग हो जाते तेरे नाए बासा रा गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर व भरिया मिल साधु खंड लखंडा है पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हार लिव मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पुन बड़ा है का डंडौत पुन बड़ा है रहाओ ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਤਨੰਤਰ ਹੋਮੈ ਕੰਡਾਹੇ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚਲਹਿ ਚੁਬਹਿ ਦੁਖ ਪਾਵ ਹੈ ਜਮਕਾਲ ਸਹਸ ਡੰਡਾਹੇ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ ਦੁਖ ਜਨ ਮਰਨ ਪਵਖੰਡਾਹੇ। ਵਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਹੇ। ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਬਡ ਵੱਡਾਹੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖਮੰਡਾਹੇ। ਰਾ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਕਰੋਂ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ ਆਗੈ ਬਸਨ ਸਹੇਲਾ। ਆਉਦ ਕਟੈ ਦਿਨ ਸਿਰਣਾ ਰੇ ਮਾਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾ ਸਵਾਰੇ ਰਹਾਉ। ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮਹਿ ਸਰਿਉ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸੇ ਜਗਾਏ ਪਿਆਵਹਿ ਰਸ ਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ। ਜਾ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਵਿਹਾਜ ਹੋ ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨਹੀ ਵਸੇਰਾ। ਨਿਜ ਕਰ ਮਹਿਲ ਪਾਓ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ।